जापान की करेंसी लगभग 5 येन की छलांग लगाकर तकरीबन 2.5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। येन की कीमत 40 साल की कम तरीन सतह के आसपास रही थी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क पर कहा कि वॉशिंगटन का ख्याल है कि येन का तेज उतार चढ़ाव मुनासिब नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका ख्याल है कि यह करेंसी अपनी असल कदर से बहुत कम है।

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। अब आज की बाकी खबरें। जापान की वजारत दिफा का कहना है कि इसके एक तबाहकुन बहरी जहाज ने मुल्क में पहली बार टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के लाइव टेस्ट का तजर्बा किया है। ये संगे मील एक ऐसे वक्त में उबूर हुआ है जब टोक्यो अपनी दिफाई सलाहियतों को तेजी से मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वजारत ने कहा कि ये तजर्बा जापान के वक्त के मुताबिक बुध को बहरुल काहिल में किया गया, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि बहरी सेल्फ डिफेंस फोर्स के तबाहकुन बहरी जहाज जो काई से टोमाहॉक मिसाइल दागा जा सकता है। एजिस से लैस जहाज ने मार्च तक टोमाहॉक लॉन्चिंग की सलाहियत हासिल कर ली थी। इसे सितंबर के आसपास जुनूब मगरबी जापान में सासेबो की बंदरगाह पर वापस जाना है। वजारत का कहना है कि अमरीकी साख्ता टोमाहॉक जापान की जवाबी हमले की सलाहियतों का हिस्सा है। इन मिसाइलों की रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर है। वजारत मार्च 2028 तक ऐसे 400 तक मिसाइल तकरीबन 169.4 बिलियन येन या लगभग 1.04 बिलियन डॉलर में खरीदने का इरादा रखती है। वजारत के साथ दीगर एजिस से लैस बहरी जहाज़ों को भी टोमाहॉक दागने की सलाहियत का हामिल बनाए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा की पट्टी में इस्लामी ग्रुप हमास ने गैर मुसल्ला होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये मुआहदा बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया जो गजा में अबूरी इंतजामिया की निगरानी के लिए कायम शुदा बैन अल-अक़वामी तंजीम है। ट्रंप ने जुमेरात को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए एक तारीखी मुआहदा किया है। बरतानवी पब्लिक ब्रॉडकास्टर BBC ने भी जुमे को खबर दी है कि हमास के एक सीनियर एहलकार की जानिब से बताया गया है कि इस ग्रुप ने गजा में मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने के बोर्ड ऑफ पीस के मंसूबे से इत्तेफाक किया है और ये कि इसका एक बाज़ाब्ता बयान जल्द ही जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। अगर हमास गैर मुसल्लह हो जाए और इसराइली अफवाज इस पट्टी से वापस चले जाएं, तो फलस्तीनी इलाकों के अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त मतवक्को है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलाकाई इंतखाबात के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक झड़पें मकामी कानून साज असम्बली के लिए पीर को मुनक़िदा वोटिंग के बाद हुईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबी असलाहत का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन की एक कस्बे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प हुई। वहां की सूरत हाल की तफसीलात अभी तक नामालूम हैं क्योंकि हुक्काम ने मकामी इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी है, लेकिन रॉयटर्स ने एक एहतजाजी ग्रुप का हवाला देते हुए बताया कि इस बार हलाकतों की तादाद 30 से ज़्यादा है। दरियसना मकामी मीडिया ने सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों का एक रुकन हलाक हो गया। इंतखाबी असलाहत और मकामी सियासतदानों की मराहत के खात्मे का मुतालबा करने वाले इस एहतजाजी ग्रुप को गुज़िश्ता माह गैरकानूनी तंजीम करार दिया गया था। गुज़िश्ता माह भी इस ग्रुप की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प जानलेवा साबित हुई थी। खित्ते के दीगर अजला में अगस्त में पोलिंग के मजीद मराहल होने वाले हैं, जिससे मजीद झड़पों के खदशात बढ़ रहे हैं।
1: आखिर में आम खबरों का खुलासा। कुमामोतो में जलजिले के बाद हलाकतों की तादाद 35 हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जापानी हुकाम ने येन को सहारा देने के लिए ज़रे मुबादला मंडी में मदाखलत की है और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: रोहिणी जी, क्या हाल है? जापान भर में जारी गर्मी की इस प्रचंड लहर में अपना सही से ख्याल तो रख रही है ना?
1: जी बिल्कुल रख रही हूँ। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी तापघात की चेतावनी जारी कर लोगों से तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने को कहा है।
0: जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दौरान होने वाले तरह तरह के उत्सवों और मत्सरियों का भी आनंद ले। जैसे बीते दिनों मुझे टोक्यो के एक लोकप्रिय इलाके ओदाइबा में आयोजित हानाबी यानी आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला।
1: अरे वाह, ओदाइबा की हानाबी! करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार जापान आई थी तब मैं वहाँ रहती थी।
0: अच्छा।
1: तब देखी थी जी, बहुत मजा आया था। समुद्र किनारे बैठकर ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हुए आसमान में टिमटिमाती रंग बिरंगी आतिशबाजी सचमुच कमाल की थी।
0: अच्छा, आपने भी देखी। वैसे जानती है जापान भर में गर्मियों के दिनों में हानाबी के सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा, यानी इन दिनों हर सप्ताह कहीं न कहीं एक हानाबी का कार्यक्रम।
0: जी,
1: लोगों के मनोरंजन का जबरदस्त इंतजाम है ये तो। सुना है कि हर आयोजन में 10 से 30 हजार आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वैसे ये बताएं कि हानाबी का आयोजन गर्मियों के दिनों में ही क्यों होता है?
0: असल में इसके कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौसमी कारण हैं। इनका इतिहास जापान के एदो काल में जाता है। 1733 में अकाल और बीमारियों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति और सम्मान तथा भविष्य में आपदाओं से संरक्षण की प्रार्थना के रूप में इनका आयोजन किया जाने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध रही सुमेधा नदी पर होने वाली आतिशबाजी। उसके बाद ये परंपरा देश भर में फैल गई। गर्मियों की रातें सुहावनी हुआ करती थीं और लोग घरों के बाहर निकल सकते थे। साथ ही पुराने जमाने में धान की रुपाई के बाद और कटाई से पहले किसानों के पास थोड़ा समय होता था जिसमें वे इनका आनंद ले सकते थे।
1: अच्छा।

0: यानी वक्त के साथ हनाबी गर्मी के दिनों की मात्सुरियों का अहम हिस्सा बन गई।
1: जी
0: अच्छा, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र या नदी किनारे इनका आनंद लेने जाते हैं। मैंने देखा है कि इन मात्सुरियों में मेले भी लगते हैं जिनमें पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है।
1: जी हाँ, और अक्सर लोग गर्मियों की पारंपरिक जापानी पोशाक युकाता में दिखाई देते हैं।
0: अच्छा
1: अच्छा, रोहिणी जी, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि हनाबी का आयोजन मुख्य रूप से नदी किनारे या समुद्र तट पर किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे लकड़ी के मकान सुरक्षित रहते हैं
0: और दूसरे इन इलाकों में हवा भी होती है जिससे धुआं फटाफट गायब हो जाता है।
1: जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि हनाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
0: हाना तो पता है, हाना यानी फूल, जो जापानी लोगों को बेहद प्रिय होते हैं। यहाँ हर मौसम का एक खास पुष्प मिल जाएगा। बी का क्या अर्थ है?
1: बी का अर्थ है आग, यानी हनाबी का मतलब हुआ आग के फूल।
0: अरे वाह, आग के फूल! तभी मैं देखूं कि ज्यादातर हनाबी जब आकाश में फूटती हैं, सुंदर से फूल के जैसे दिखाई देती हैं, जैसे गुलदाउदी का फूल हो।
1: जी, गुलदाउदी और पियोनी के फूलों जैसी आतिशबाजी सबसे लोकप्रिय हैं। फिर कुछ आसमान में शिदारे यानागी यानी वीपिंग विलो या तितली या झरनी जैसी भी दिखाई देती हैं। स्या आकाश जब इनसे रोशन होता है तो कितना रोमांचक दृश्य दिखता है।
0: सचमुच, गर्मियों में इन उत्सवों की धूम सारी थकान और बेचैनी खत्म कर देती है और मन उल्लास से भर जाता है।
1: वाकई, और मेरा मन हर सप्ताह मिलने वाले ढेर सारे पत्रों से खुश हो जाता है। तो उठाते हैं ये पत्र जिनमें श्रोता मित्रों की राय किसी पटाखे से कम नहीं है।
0: तो चलिए, मैं लेती हूँ यह पत्र। पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक ने उनके गांव में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के बारे में जिक्र किया है।
1: अरे वाह, हम भी अभी जापान के उत्सवों की बात ही कर रहे थे और देखे ये उत्सव पर पत्र आ गया। जानती है, 2 साल पहले चेरी के देश से कार्यक्रम के लिए मैंने टोक्यो में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की रिपोर्टिंग भी की थी।
0: अरे वाह,
1: चलिए आगे बताएं कि प्रदीप जी क्या लिखते हैं।
0: जी लिखते हैं, शुभ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रथ यात्रा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आपसी सद्भाव और मिलन का एक अनोखा अवसर है। रथ यात्रा के अवसर पर हमारे गांव में भव्य मेला लगा है। मेले का उत्सवमय वातावरण मन को आनंद से भर देता है। गर्मा गर्म जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ, कुरकुरे पापड़, भुनी हुई मूंगफली, स्वादिष्ट घुगनी, मुगलई तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सभी के बीच प्रेम, अपनापन और भाईचारे का सुंदर वातावरण बन जाता है। यही मिलन हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। मेरा विश्वास है कि रथ यात्रा का यह पावन उत्सव हम सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, मानवता और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलाएगा।
1: सभी मित्रों को भी रथ यात्रा की बधाई। और प्रदीप जी, आपने अपने यहाँ की जगन्नाथ यात्रा की ऐसी विस्तृत जानकारी दी कि लगता है मानो हम भी आपके साथ मेले में पहुँच गए हों। और देखिए, प्रदीप जी ने अपना एक और पत्र भेजा है जिसमें वे जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के फुकुओका के पारंपरिक हाकाता गियोन यामाकासा उत्सव के बारे में एनएचके वर्ल्ड जापान के फेसबुक पोस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है।
0: जी,
1: लिखते हैं कि इस उत्सव के बारे में जानकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 780 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की एकता, साहस, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग का अद्वितीय प्रतीक है। सजी हुई भारी भरकम झांकियों को कंधों पर उठाकर लोग जिस उत्साह और अद्भुत सामंजस्य के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसे देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि किसी परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों का प्रेम कितना गहरा हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भावना और उत्साह के साथ इस उत्सव को आगे बढ़ाना जापानी संस्कृति की मजबूत नींव का परिचायक है। विशेष रूप से ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को

0: जापान की महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी स्थान मिला है। ये केवल जापान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे उत्सव हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करें तो वे विश्व मंच पर भी सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं।
1: प्रदीप बसाक जी, सच कहा, ये परंपराएं हमें अपने अतीत, अपनी माटी से जोड़े रखती हैं। शांग्रीला जी, इस गियोन यामाकासा उत्सव को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वेबसाइट पर इसकी झलक देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना शानदार उत्सव है।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: इतनी भारी भरकम पालकियों को लोग जैसी मुस्तैदी के साथ लेकर दौड़ते हैं और जिस तरह से वे उसे जरा भी गिराए बिना मुड़ते हैं, वो वाकई हैरत अंगेज है।
0: सचमुच इस तरह का सामंजस्य यहाँ की लगभग हर मात्सुरी में देखने को मिल जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं को बता देते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। तो मित्रों, नोट करें फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। अब यह पत्र आया है ओडिशा में केसिंगा से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश अग्रवाल। अरे वाह, सुरेश जी ने भी हकाता गियोन उत्सव का जिक्र किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लिखते हैं, वार्षिक गियोन यामाकासा उत्सव का रोमांच, उल्लास और सांस्कृतिक वैभव समेटे आपका वीडियो देखकर मन आनंद और विस्मय से भर उठा। विशाल और भारी भरकम पालकियों को कंधों पर उठाए कहारों की टोलियां जिस अद्भुत समन्वय, अदम्य उत्साह और तीव्र गति से नगर की सड़कों पर दौड़ रही थीं, वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति कराने वाला था। जन कल्याण एवं रोग निवारण की प्रार्थना कि यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से आश्चर्यजनक साम्य का आभास कराती हैं। इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और मन को संपन्दित कर देने वाली प्रस्तुति के लिए आभार।
0: सुरेश जी, आभार आपका भी, जो रथ यात्रा के व्यस्त समय के बीच आपने वक्त निकालकर पत्र लिखा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप कार्यक्रम सुनने के साथ ही वीडियो में प्रेषित जानकारी का भी आनंद लेने लगे हैं।
1: जी,
0: कुछ बातों को देखिए शब्दों में बांधना असंभव सा हो जाता है, उन्हें देखने में ही मजा है। और ये 19 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में सुरेश जी ने लिखा है, जापानी फोल्डिंग पंखे सेंसु तथा उसके इतिहास पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक लगी। इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। भारत में भी हाथ से झलने वाले पंखों की समृद्ध परंपरा रही है। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में इनके विविध और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि बैटरी से चलने वाले छोटे पंखों के प्रचलन के बाद हाथ पंखों का उपयोग काफी कम हो गया है, फिर भी ये हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर प्रतीक है। सही कहा उन्होंने इस बात को। और इसी संदर्भ में मैं ओडिशा के बांस की पत्तियों से निर्मित एक आकर्षक डिजाइनर हाथ पंखे का चित्र साझा कर रहा हूँ। आशा है यह आप सभी को पसंद आएगा। देखिए रोहिणी जी, उनका भेजा ये चित्र कितना रंग बिरंगा पंखा है।
1: अरे वाह, ऐसे पंखे तो मैंने भी अपने यहाँ देखे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, और ये हरे और गुलाबी पंखे की डिजाइन कितनी सुंदर है।
0: जी वाकई।
1: और इसका आकार तो एक झंडे जैसा दिख रहा है।
0: जी हाँ जी हाँ। और वाकई इसे देखकर दादी नानी की याद आ गई। उनके सिरहाने ये अक्सर रहता था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और इसको घुमाते हुए हाथों की बढ़िया कसरत हो जाती है।
1: बिल्कुल, सो तो है।
0: अच्छा, 19 जुलाई के कार्यक्रम के लिए बनाई गई प्रोमो रील को अनेक लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया है। फेसबुक पर कुछ कमेंट थे। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम चेरी के देश से बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका पांडे ने इसे वाव बताया है। वहीं लता पांडे, अनिल डोबरियाल, अरविंद कुमार मिश्रा, रेणु मिश्रा, सोनी मोनी और श्रुति ने इमोजी के जरिए इसे मजेदार बताया है।
1: आप सभी का आभार। शांग्रीला जी, आजकल ये प्रोमो रील लोगों में काफी खास लोकप्रिय हो रही है। ताना बाता उत्सव के बारे में रील तो ऐसी वायरल हुई कि पिछले 2 सप्ताह में 35,000 से ज्यादा लोगों ने देख ली है।
0: वाकई?
1: हाँ। वहीं जापान में ऑटो रिक्शा की रील भी खूब पसंद की गई और बहुत मजेदार कमेंट भी आए हैं। मोनिता मिधा लिखती हैं, लव दिस लाइन, ऑटो मिल गया जापान में। वहीं उमेश कुमार शर्मा कमेंट करते हैं, जापान में भी ऑटो होता है यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की यह जानकर आश्चर्य भी हुआ।
0: उमेश जी, जैसा कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऑटो चालक एनएचके में हमारी सहयोगी होरी कोशी जी हैं, उन्होंने शौकिया ऑटो खरीदा है। भारत प्रवास के दौरान उन्हें इसकी सवारी इतनी मजेदार लगती थी कि मौका मिलने पर उन्होंने इसे खरीद ही लिया, लेकिन इसका आयात करने में उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी।
1: अब शौक के आगे खर्च को क्या देखना, शौक बड़ी चीज है। इस अगले कमेंट को पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। आयुष खान लिखते हैं, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के।
0: आयुष जी, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के। जरा सोचिए आप श्रोताओं के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस रील पर ओम अग्रवाल का कमेंट है, जहां जापान में रोज नई नई कारें आती हैं, वहां इस कलयुग 2026 में ऑटो, भाई वाह।
1: ओम अग्रवाल जी, आजकल जापान में ऑटो रिक्शा खूब लोकप्रिय हो रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग नए नए तरीकों से इनका उपयोग कर रहे हैं। कोई इसमें चाय की टपरी बना रहा है, तो कोई इसमें सोने का इंतजाम कर लंबी सैर की सवारी बना रहा है। ओम अग्रवाल जी का एक और कमेंट है, मेरे घर के पास भी 5 साल से ऑटो खड़ा है, लेकिन टोक्यो में जानकर आश्चर्य हुआ। हेमराज इसको एकदम नया वाला बताते हैं। लाल बाबू पांडे ने लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। राघवेंद्र नौटियाल ने इसे गजब बताया। मुरारी शाह ने बहुत बढ़िया लिखा और मृणालिका ओझा, अशोक मोजीदारा, राजेश गिरी ने इमोजी के जरिए नमस्कार लिखा है।
1: योकोहामा में जापानी महिला द्वारा संचालित दिलजोड़ कैफे की रील पर गोविंद सोनी का कमेंट है, शानदार प्रयास। भाषा और संस्कृतियों की समझ मजबूत होने से रिश्ते निश्चित ही प्रगाढ़ होंगे। जापान एक अद्भुत राष्ट्र है और जितनी भी मेरी समझ है उसके अनुसार ये एक शानदार देश है। मृणालिका ओझा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, सुंदर। वहीं अशोक डीवाई ने लिखा है कि दोनों शांतिप्रिय सभ्यता मिलकर एशिया टाइगर बन जाएंगी।
0: इतने मजेदार कमेंट के लिए सभी मित्रों का आभार। आपके कमेंट से जान पड़ता है कि रील बनाने के हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और रोहिणी जी, कार्यक्रम के शुरू में हमने हानाबी यानी आतिशबाजी की इतनी चर्चा की, तो क्यों ना चलते चलते ये गीत सुना जाए।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: गीत है हानाबी, जिसे स्वर दिया है आई ने।

0: दोस्तों आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: रोहिणी जी, क्या हाल है? जापान भर में जारी गर्मी की इस प्रचंड लहर में अपना सही से ख्याल तो रख रही है ना?
1: जी बिल्कुल रख रही हूँ। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी तापघात की चेतावनी जारी कर लोगों से तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने को कहा है।
0: जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दौरान होने वाले तरह तरह के उत्सवों और मत्सरियों का भी आनंद ले। जैसे बीते दिनों मुझे टोक्यो के एक लोकप्रिय इलाके ओदाइबा में आयोजित हानाबी यानी आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला।
1: अरे वाह, ओदाइबा की हानाबी! करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार जापान आई थी तब मैं वहाँ रहती थी।
0: अच्छा।
1: तब देखी थी। जी बहुत मजा आया था। समुद्र किनारे बैठकर ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हुए आसमान में टिमटिमाती रंग बिरंगी आतिशबाजी सचमुच कमाल की थी।
0: अच्छा, आपने भी देखी। वैसे जानती है जापान भर में गर्मियों के दिनों में हानाबी के सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा, यानी इन दिनों हर सप्ताह कहीं न कहीं एक हानाबी का कार्यक्रम।
0: जी,
1: लोगों के मनोरंजन का जबरदस्त इंतजाम है ये तो। सुना है कि हर आयोजन में 10 से 30 हजार आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वैसे ये बताएं कि हानाबी का आयोजन गर्मियों के दिनों में ही क्यों होता है?
0: असल में इसके कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौसमी कारण हैं। इनका इतिहास जापान के एदो काल में जाता है। 1733 में अकाल और बीमारियों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति और सम्मान तथा भविष्य में आपदाओं से संरक्षण की प्रार्थना के रूप में इनका आयोजन किया जाने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध रही सुमेदा नदी पर होने वाली आतिशबाजी। उसके बाद ये परंपरा देश भर में फैल गई। गर्मियों की रातें सुहावनी हुआ करती थीं और लोग घरों के बाहर निकल सकते थे। साथ ही पुराने जमाने में धान की रुपाई के बाद और कटाई से पहले किसानों के पास थोड़ा समय होता था जिसमें वे इनका आनंद ले सकते थे।
1: अच्छा, यानी वक्त के साथ हानाबी गर्मी के दिनों की मात्सुरियों का अहम हिस्सा बन गई।
0: जी।
1: अच्छा, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र या नदी किनारे इनका आनंद लेने जाते हैं। मैंने देखा है कि इन मात्सुरियों में मेले भी लगते हैं जिनमें पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है।
0: जी हाँ, और अक्सर लोग गर्मियों की पारंपरिक जापानी पोशाक युकाता में दिखाई देते हैं।
1: अच्छा
0: अच्छा, रोहिणी जी, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि हानाबी का आयोजन मुख्य रूप से नदी किनारे या समुद्र तट पर किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे लकड़ी के मकान सुरक्षित रहते हैं
1: और दूसरे इन इलाकों में हवा भी होती है जिससे धुआं फटाफट गायब हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि

0: हानाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
1: हाना तो पता है, हाना यानी फूल, जो जापानी लोगों को बेहद प्रिय होते हैं। यहाँ हर मौसम का एक खास पुष्प मिल जाएगा। बी का क्या अर्थ है?
0: बी का अर्थ है आग, यानी हानाबी का मतलब हुआ आग के फूल।
1: अरे वाह, आग के फूल! तभी मैं देखूं कि ज्यादातर हानाबी जब आकाश में फूटती हैं, सुंदर से फूल के जैसे दिखाई देती हैं, जैसे गुलदाउदी का फूल हो।
0: जी, गुलदाउदी और पियोनी के फूलों जैसी आतिशबाजी सबसे लोकप्रिय हैं। फिर कुछ आसमान में शिदारे यानागी यानी वीपिंग विलो या तितली या झरनी जैसी भी दिखाई देती हैं। स्याह आकाश जब इनसे रोशन होता है तो कितना रोमांचक दृश्य दिखता है।
1: सचमुच, गर्मियों में इन उत्सवों की धूम सारी थकान और बेचैनी खत्म कर देती है और मन उल्लास से भर जाता है।
0: वाकई, और मेरा मन हर सप्ताह मिलने वाले ढेर सारे पत्रों से खुश हो जाता है। तो उठाते हैं ये पत्र जिनमें श्रोता मित्रों की राय किसी पटाखे से कम नहीं है।
1: तो चलिए, मैं लेती हूँ यह पत्र। पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक ने उनके गांव में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के बारे में जिक्र किया है।
0: अरे वाह, हम भी अभी जापान के उत्सवों की बात ही कर रहे थे और देखे ये उत्सव पर पत्र आ गया। जानती है, 2 साल पहले चेरी के देश से कार्यक्रम के लिए मैंने टोक्यो में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की रिपोर्टिंग भी की थी।
1: अरे वाह,
0: चलिए आगे बताएं कि प्रदीप जी क्या लिखते हैं।
1: जी लिखते हैं, शुभ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रथ यात्रा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आपसी सद्भाव और मिलन का एक अनोखा अवसर है। रथ यात्रा के अवसर पर हमारे गाँव में भव्य मेला लगा है। मेले का उत्सवमय वातावरण मन को आनंद से भर देता है। गर्मा गर्म जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ, कुरकुरे पापड़, भुनी हुई मूंगफली, स्वादिष्ट घुगनी, मुगलई तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सभी के बीच प्रेम, अपनापन और भाईचारे का सुंदर वातावरण बन जाता है। यही मिलन हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। मेरा विश्वास है कि रथ यात्रा का यह पावन उत्सव हम सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, मानवता और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलाएगा।
0: सभी मित्रों को भी रथ यात्रा की बधाई। और प्रदीप जी, आपने अपने यहाँ की जगन्नाथ यात्रा की ऐसी विस्तृत जानकारी दी कि लगता है मानो हम भी आपके साथ मेले में पहुंच गए हों। और देखिए, प्रदीप जी ने अपना एक और पत्र भेजा है जिसमें वे जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के फुकुओका के पारंपरिक हाकाता गियोन यामाकासा उत्सव के बारे में NHK वर्ल्ड जापान के फेसबुक पोस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है।
1: जी,
0: लिखते हैं कि इस उत्सव के बारे में जानकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 780 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की एकता, साहस, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग का अद्वितीय प्रतीक है। सजी हुई भारी भरकम झांकियों को कंधों पर उठाकर लोग जिस उत्साह और अद्भुत सामंजस्य के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसे देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि किसी परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों का प्रेम कितना गहरा हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भावना और उत्साह के साथ इस उत्सव को आगे बढ़ाना जापानी संस्कृति की मजबूत नींव का परिचायक है। विशेष रूप से यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को जापान की महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी स्थान मिला है। यह केवल जापान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे उत्सव हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करें तो वे विश्व मंच पर भी सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं।
1: प्रदीप बसाक जी, सच कहा, ये परंपराएं हमें अपने अतीत, अपनी माटी से जोड़े रखती हैं। शांग्रीला जी, इस गियोन यामाकासा उत्सव को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वेबसाइट पर इसकी झलक देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना शानदार उत्सव है।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: इतनी भारी भरकम पालकियों को लोग जैसी मुस्तैदी के साथ लेकर दौड़ते हैं और जिस तरह से वे उसे जरा भी गिराए बिना मुड़ते हैं वो वाकई हैरत अंगेज है।
0: सचमुच इस तरह का सामंजस्य यहाँ की लगभग हर मात्सुरी में देखने को मिल जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं को बता देते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। तो मित्रों नोट करें फ्रीक्वेंसी,
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। अब यह पत्र आया है ओडिशा में केसिंगा से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश अग्रवाल। अरे वाह, सुरेश जी ने भी हकाता गियोन उत्सव का जिक्र किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लिखते हैं, वार्षिक गियोन यामाकासा उत्सव का रोमांच, उल्लास और सांस्कृतिक वैभव समेटे आपका वीडियो देखकर मन आनंद और विस्मय से भर उठा। विशाल और भारी भरकम पालकियों को कंधों पर उठाए कहारों की टोलियां जिस अद्भुत समन्वय, अदम्य उत्साह और तीव्र गति से नगर की सड़कों पर दौड़ रही थीं, वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति कराने वाला था। जन कल्याण एवं रोग निवारण की प्रार्थना की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से आश्चर्यजनक साम्य का आभास कराती हैं। इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और मन को संपन्दित कर देने वाली प्रस्तुति के लिए आभार।
0: सुरेश जी आभार आपका भी, जो रथ यात्रा के व्यस्त समय के बीच आपने वक्त निकालकर पत्र लिखा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप कार्यक्रम सुनने के साथ ही वीडियो में प्रेषित जानकारी का भी आनंद लेने लगे हैं।
1: जी,
0: कुछ बातों को देखिए शब्दों में बांधना असंभव सा हो जाता है, उन्हें देखने में ही मजा है। और ये 19 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में सुरेश जी ने लिखा है, जापानी फोल्डिंग पंखे सेंसु तथा उसके इतिहास पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक लगी। इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। भारत में भी हाथ से झलने वाले पंखों की समृद्ध परंपरा रही है। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में इनके विविध और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि बैटरी से चलने वाले छोटे पंखों के प्रचलन के बाद हाथ पंखों का उपयोग काफी कम हो गया है, फिर भी ये हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर प्रतीक है। सही कहा उन्होंने इस बात को। और इसी संदर्भ में मैं ओडिशा के बांस की पत्तियों से निर्मित एक आकर्षक डिजाइनर हाथ पंखे का चित्र साझा कर रहा हूँ। आशा है यह आप सभी को पसंद आएगा। देखिए रोहिणी जी, उनका भेजा ये चित्र कितना रंग बिरंगा पंखा है।
1: अरे वाह, ऐसे पंखे तो मैंने भी अपने यहाँ देखे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, और ये हरे और गुलाबी पंखे की डिजाइन कितनी सुंदर है।
0: जी वाकई।
1: और इसका आकार तो एक झंडे जैसा दिख रहा है।
0: जी हाँ जी हाँ, और वाकई इसे देखकर दादी नानी की याद आ गई। उनके सिरहाने ये अक्सर रहता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इसको घुमाते हुए हाथों की बढ़िया कसरत हो जाती है।
1: बिल्कुल, सो तो है।
0: अच्छा, 19 जुलाई के कार्यक्रम के लिए बनाई गई प्रोमो रील को अनेक लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया है। फेसबुक पर कुछ कमेंट थे। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम चेरी के देश से बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका पांडे ने इसे वाव बताया है। वहीं लता पांडे, अनिल डोबरियाल, अरविंद कुमार मिश्रा, रेणु मिश्रा, सोनी मोनी और श्रुति ने इमोजी के जरिए इसे मजेदार बताया है।
1: आप सभी का आभार। शांग्रीला जी, आजकल ये प्रोमो रील लोगों में काफी खास लोकप्रिय हो रही है। तानाबाता उत्सव के बारे में रील तो ऐसी वायरल हुई कि पिछले 2 सप्ताह में 35,000 से ज्यादा लोगों ने देख ली है।
0: वाकई।
1: हाँ, वहीं जापान में ऑटो रिक्शा की रील भी खूब पसंद की गई और बहुत मजेदार कमेंट भी आए हैं। मोनिता मिधा लिखती हैं, लव दिस लाइन, ऑटो मिल गया जापान में। वहीं उमेश कुमार शर्मा कमेंट करते हैं, जापान में भी ऑटो होता है, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, यह जानकर आश्चर्य भी हुआ।
0: उमेश जी, जैसा कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऑटो चालक एनएचके में हमारी सहयोगी होरी कोशी जी हैं, उन्होंने शौकिया ऑटो खरीदा है। भारत प्रवास के दौरान उन्हें इसकी सवारी इतनी मजेदार लगती थी कि मौका मिलने पर उन्होंने इसे खरीद ही लिया, लेकिन इसका आयात करने में उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी।
1: अब शौक के आगे खर्च को क्या देखना, शौक बड़ी चीज है। इस अगले कमेंट को पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। आयुष खान लिखते हैं, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के।
0: आयुष जी, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के। जरा सोचिए, आप श्रोताओं के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस रील पर ओम अग्रवाल का कमेंट है, जहां जापान में रोज नई नई कारें आती हैं, वहां इस कलयुग 2026 में ऑटो, भाई वाह।
1: ओम अग्रवाल जी, आजकल जापान में ऑटो रिक्शा खूब लोकप्रिय हो रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग नए नए तरीकों से इनका उपयोग कर रहे हैं। कोई इसमें चाय की टपरी बना रहा है, तो कोई इसमें सोने का इंतजाम कर लंबी सैर की सवारी बना रहा है। ओम अग्रवाल जी का एक और कमेंट है, मेरे घर के पास भी 5 साल से ऑटो खड़ा है। लेकिन टोक्यो में जानकर आश्चर्य हुआ। हेमराज इसको एकदम दया वाला बताते हैं। लाल बाबू पांडे ने लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। राघवेंद्र नौटियाल ने इसे गजब बताया। मुरारी शाह ने बहुत बढ़िया लिखा और मृणालिका ओझा, अशोक मोजीदारा, राजेश गिरी ने इमोजी के जरिए नमस्कार लिखा है।
1: योकोहामा में जापानी महिला द्वारा संचालित दिलजोड़ कैफे की रील पर गोविंद सोनी का कमेंट है, शानदार प्रयास। भाषा और संस्कृतियों की समझ मजबूत होने से रिश्ते निश्चित ही प्रगाढ़ होंगे। जापान एक अद्भुत राष्ट्र है और जितनी भी मेरी समझ है उसके अनुसार ये एक शानदार देश है। मृणालिका ओझा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, सुंदर। वहीं अशोक डीवाई ने लिखा है कि दोनों शांतिप्रिय सभ्यता मिलकर एशिया टाइगर बन जाएंगी।
0: इतने मजेदार कमेंट के लिए सभी मित्रों का आभार। आपके कमेंट से जान पड़ता है कि रील बनाने के हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और रोहिणी जी, कार्यक्रम के शुरू में हमने हानाबी यानी आतिशबाजी की इतनी चर्चा की, तो क्यों ना चलते चलते ये गीत सुना जाए।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: गीत है हानाबी, जिसे स्वर दिया है आई ने।

0: दोस्तों आप गीत का आनंद लें और NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: क्लिप छुरी चलाते हुए इसके छिलके उतार लीजिए।
1: सार्डिन मछली जितनी ज्यादा ताजी होगी उतने ही इस पर छिलके मौजूद होंगे। उसके सर को अपनी उंगलियों से पकड़ लीजिए और मछली को पलटते हुए तमाम सतह से छिलके उतार दीजिए। उसके बाद सर को उसकी निचली तरफ से काट दीजिए। अब हम इसे बटरफ्लाई अंदाज में खोलेंगे।
0: मछली के पेट की निचली जानिब एक सख्त सी जगह होती है, लिहाजा छुरी को उसके मुखालिफ सम्त तिरछा करते हुए इसे काटें। यहां से शिगाफ बनाते हुए मछली की दुम की जानिब मौजूद सुराख तक ले जाइए। अब इसकी अंदरूनी आंतों को साफ कर लीजिए। चारों सार्डिन मछलियों को ऐसे ही साफ कीजिए। एक प्याले में काफी ज्यादा पानी डालकर मछली को धो लें। दरमियानी कांटे और पसलियों में अभी कुछ खून लगा रह गया होगा, उसकी वजह से मछली में बसांत पैदा हो सकती है, इसलिए इसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। प्याले में ताजा पानी लेकर मछलियों को दोबारा धोएं और पेपर टॉवल से इजाफी पानी खुश्क कर लें।
1: और अब बारी है तेबिरा की, यानी सार्डिन को बटरफ्लाई अंदाज में खोलने की। सबसे पहले सार्डिन को हथेली पर इस तरह रखें कि हथेली का रुख ऊपर की जानिब हो। जिस हिस्से से आपने मछली का सर काटा है उसे दाएं जानिब रखिए। दुम का हिस्सा बाएं जानिब हो और पेट आपके चेहरे की जानिब हो। अपने दोनों अंगूठे मछली के अंदर ऐन दरमियानी कांटे के ऊपर रखें।
2: 親指の爪の先が背びれに向かっていくように角度を気をつけて。
1: इस बात का ख्याल रखिए कि आपके अंगूठों के नाखूनों के सिरे मछली के अकबी पर की जानिब ठीक जगह पर जमे हों, वरना तमाम गोश्त को कांटों से अलग करना मुश्किल होगा।
0: अपनी उंगलियों के सिरों को थोड़ा सा मोड़ें। जब आपके नाखूनों के सिरे अकबी पर तक पहुंच जाएं, तो अपने अंगूठों को दरमियानी कांटे के साथ साथ आगे की जानिब हरकत दें। दाएं अंगूठे को मछली के सर की जानिब और बाएं को दुम की जानिब। इस तरह आप दरमियानी कांटे से गोश्त को अलग कर सकेंगे।
1: मछली के निचले निसफ हिस्से से दरमियानी कांटे को निकालने के लिए दोनों हाथों के अंगूठों और शहादत की उंगलियों से दरमियानी कांटे के आखिरी सिरे को पकड़े रखिए। एक हाथ को दुम की जानिब ले जाइए ताकि गोश्त कांटे से कुछ अलग हो जाए। दुम और दरमियानी कांटे को हटा दीजिए।
0: तमाम सार्डिन मछलियों को इसी तरह बटरफ्लाई अंदाज में खोल लीजिए। सार्डिन के ऊपर थोड़ी सी सोया सॉस डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब इनमें जायका जज्ब हो जाए तो किसी पेपर टॉवल से इजाफी सोया सॉस साफ कर दीजिए। किसी ट्रे में पोटैटो स्टार्च फैलाकर थोड़ा सा सार्डिन पर लगा लीजिए। आइए अब मछली को पकाते हैं। एक फ्राइंग पैन को गर्म कीजिए और इसमें रोजमर्रा से जरा हटकर कुछ ज्यादा तेल डालिए। अब इसमें सार्डिन मछलियों को इस तरह रखें कि खाल वाली सम्त ऊपर की जानिब हो।
1: दरमियानी आंच पर पकाएं। गोश्त हो या मछली, उसकी वो सम्त पहले पकाएं जो आप डिश पेश करते वक्त ऊपर की जानिब रखना चाहते हों। अगर सार्डिन पकने के बाद सुनहरी रंगत की हो गई हो तो उसे पलट दीजिए।
0: चूंकि सार्डिन जल्द पक जाती हैं, तो उन्हें पलटने के बाद आपको सिर्फ 2 मिनट तक मजीद पकाना है। उन्हें एक प्लेट में इस तरह निकालिए कि खाल वाली सम्त नीचे की जानिब हो। फ्राइंग पैन को धोकर इसमें सोया सॉस, चीनी और पानी डालकर मिलाइए। अब फ्राइंग पैन को दरमियानी आंच पर रखकर सॉस को गाढ़ा कर लीजिए। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो सार्डिन को दोबारा फ्राइंग पैन में डाल दीजिए। ख्याल रहे कि खाल वाली सम्त नीचे की जानिब हो। क्योंकि सार्डिन आसानी से नरम और भुरभुरी हो जाती है, लिहाजा आप इसे बार बार पलटने की बजाय फ्राइंग पैन को थोड़ा घुमाकर हिलाते हुए पकाइए। जब सॉस में उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और एक चम्मच की मदद से सॉस को सार्डिन पर उंडेलिए।
1: चावल भी तैयार हो चुके हैं, लिहाजा आप देगची का ढक्कन उठा सकते हैं। अब चावलों को नरमी से खोल लीजिए। कफगीर को गोलाई में घुमाते हुए चावलों को बर्तन की तह से ऊपर की जानिब लाएं। ख्याल रहे कि जब चावल कुछ ठंडे हों तो उनके ढेले ना बने। अगर सार्डिन की तैयारी

0: में कुछ वक्त हो और चावल तैयार हो चुके हों तो बेहतर है कि चावलों वाले बर्तन और ढक्कन के दरमियान एक खुश्क कपड़ा लगा दें। आइए अब इस डिश को पेश करने के लिए तैयार करते हैं। एक मुनासिब बड़ा और गहरा प्याला लीजिए। जापान में ऐसे प्याले को दोमबुरी कहा जाता है। प्याले को चावलों से निस्फ भर लीजिए और सतह को नरमी से हमवार कर दीजिए। सार्डिन को चावलों के ऊपर रखिए। फ्राइंग पैन में बची हुई सॉस को मछली के ऊपर डालना मत भूलिए।
1: प्याला तैयार करने के बाद ऊपर जापानी मिर्च सांशो के पत्ते सजा दीजिए।
0: जापानी मिर्च सांशो के पत्तों को हथेली से मसला जाए तो इनसे एक महक सी निकलती है। अपने हाथों को एक प्याली के अंदाज में मोड़कर बीच में मिर्च के चंद पत्ते लें और फिर उन्हें मसलें।
1: जापानी मिर्च सांशो पाउडर शक्ल में भी फरोख्त की जाती है, लेकिन इस मिर्च का मौसम हो तो आपको ये स्टोर्स में ताज़ा भी मिल जाती है। आप इन्हें खानों पर सजावट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें पीसकर किसी डिश के ऊपर फैलाना भी बहुत अच्छा तासुर देता है। मिर्च के पत्तों को सार्डिन काबायाकी के ऊपर डालिए और लीजिए, डिश तैयार है।
0: रवां साल बैल के दिन पर सार्डिन काबायाकी खाना आपको गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने में मदद देगा। और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कैच ऑफ द डे का, जिसमें हम आपको खाना पकाने से मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। आज हम बात करेंगे दोयो दौरानिये के दोयो नो उशी नो ही, जिसे बैल का दिन भी कहा जाता है। वैसे गुल साहब, जब आप ये नाम बैल का दिन सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है?
1: सोफिया साहब, मेरा ख्याल है कि ये मौसम गर्मा और उनागी यानी बाम मछली से मुतल्लिक है, क्योंकि हर साल इस दिन में उनागी रेस्तरानों और डिपार्टमेंट स्टोर्स के बाहर में बड़ी तवील कतारें देखा करता हूं।
0: बजा फरमाया गुल साहब आपने, लेकिन दर हकीकत दोयो दौरानिया बैल का दिन महज मौसम गर्मा में नहीं होता।
1: अच्छा।
0: 1872 तक जापान में वक्त का अंदाजा लगाने के लिए शमसी कमरी कैलेंडर राइज था। उस कैलेंडर में हर मौसम यानी बहार, गर्मा, खिजा और सरमा के आखिरी 18 दिनों को दोयो कहा जाता था और उसे आने वाले मौसम की तैयारी का दौरानिया ख्याल किया जाता था।
1: समिन, मौसम गर्मा का दोयो साल का गर्म तरीन वक्त होता है। तकरीबन 250 साल कबल एदो दौर में गर्मी की शिद्दत से होने वाली थकान को दूर करने और दोयो दौरानिया के डे ऑफ द ऑक्स यानी बैल के दिन पर होने वाली बीमारी से बहाली के लिए कुछ सेहत बख्श इकदाम करना काफी मारूफ हो गया था। जापानी हरूफ तहजी के हर्फ ऊ से शुरू होने वाली किसी चीज को खाना भी अच्छा समझा जाता था, क्योंकि दी ऑक्स या उशी भी ऊ से शुरू होता है। और हुआ कुछ यूं कि फिर उस दौर में उनागी का बया के प्याला खाना बहुत मकबूल हो गया। गाढ़ी का बया के सॉस का नमकीन और मीठा जायका उनागी के साथ जबरदस्त लगता है। ये गजाइत से भरपूर होने के साथ साथ उनागी की मट्टी जैसी महक को भी दूर करता है। आजकल जब लोग उनागी के बारे में बात करते हैं तो काबायाकी फौरन जहन में आता है।
0: उनागी में हयातीन यानी विटामिन्स की बड़ी मिकदार मौजूद होती है और जापानी अफराद आला दर्जे की गजाइत के हामिल एक डिश के तौर पर गुज़िश्ता 1000 साल से इसे खा रहे हैं।
1: जी, आज के दौर में भी बहुत से गजाइत भरे खाने दस्तियाब हैं, लेकिन जापानी अफराद अभी भी मौसम गर्मा में उनागी काबायाकी खाने के मुंतजिर रहते हैं। उनागी काबायाकी जापानी अफराद के लिए एक रिवायत बन गया है।
0: सामिन, अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे जापानी खाने पकाएं। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे।

0: गुल वैसे वतनाबे साहिबा ने बड़ा अच्छा मुतबादल इस्तेमाल किया है बा मछली का, क्योंकि सार्डिन भी गजाइत से भरपूर होती है।
1: जी सूफी, और आपको तो पता ही है कि बाम कितनी महंगी होती है और सार्डिन तो इंतहाई मुनासिब कीमत में मिल जाती है और जापान में रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है, इसलिए तो सारा साल दस्तयाब होती है।
0: जी गुल, और दूसरे कई ममालिक में भी इंतहाई आसानी से दस्तयाब होती है।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर ना मिले तो फिर आज की डिश बनाने के लिए कौन सी मछली इस्तेमाल की जाए?
0: कोई बात नहीं, वही मछली यानी के बाम इस आसानी से अगर आपके मुल्क में दस्तयाब है तो इसे इस्तेमाल करें, जिसके नेमल बदल के तौर पर सार्डिन को इसके की डिश तैयार की गई है।
1: अच्छा, फिर तो बड़ी ये बेहतरीन सी डिश बन जाएगी ना?
0: बिल्कुल वही डिश बन जाएगी। और गुल, अगर दोनों में से कोई भी ना हो तो कोई भी दूसरी मछली मिसाल के तौर पर हॉर्स मैकरल वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है।
1: अच्छा चले, मछली का मसला तो हुआ हल
0: जी।
1: और चावल भी आप हमेशा बताती हैं कि जो चावल भी आप सामने के इलाके में आसानी से दस्तयाब हो उसे थोड़ा सा नरम करके पका लें,
0: बिल्कुल
1: खिचड़ी के अंदाज में। तो ये ठीक ठीक सबक बताया ना मैंने आपको,
0: खिचड़ी के अंदाज में नहीं थोड़ा सा नरम,
1: थोड़ा सा नरम कर लिया। खिचड़ी ज्यादा नरम होती है क्या?
0: खिचड़ी ज्यादा नरम हो जाएगी। अच्छा, नहीं
1: चलिए।
0: इसके अलावा गुल, पोटैटो स्टार्च ना मिले तो कॉर्न स्टार्च से भी काम चल जाएगा। मैं भी अक्सर पोटैटो की जगह कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल कर ही लेती हूँ।
1: अच्छा चलिए, ये तो हो गए जनाब नेमुल बदल अज्जा।
0: बिल्कुल,
1: और बाकी अज्जा तो हर जगह बहुत आसानी से दस्तयाब होते हैं, तो हमारे सामने ये डिश मेरा ख्याल है कि बना ही लेंगे अब तो।
0: बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। एक चीज भूल गए आप।
1: अच्छा कौन सी?
0: सांशो या पेपर लीव्स।
1: ओ हो, ये तो भूल ही गया। अच्छा अगर इसे ना भी सजाया जाए तो काम तो चल जाएगा ना?
0: वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू से किसी डिश में चार चांद लग जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे पुदीना धनिया वगैरह हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मछली के साथ सोया एक हर्ब होता है जो हमारे यहाँ और कई मुल्कों में पाया जाता है, और मछली के साथ इसका बड़ा अच्छा इम्तिजाज होता है।
1: अच्छा यानी आप कहना चाह रही हैं कि अगर आज की तरकीब में सोए को सांशो की जगह डाला जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और गुल, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सामने गर्मियों में ये डिश जरूर बनाएंगे।
1: जी अगर बनाए तो हमें जरूर बताइएगा।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
3: जी सामाई, प्रोग्राम आपने सुना और सुनकर यकीनन आपका बेखाबा या किदोन खाने का दिल चाहने लगा होगा और मुंह में पानी भी आ रहा होगा। वैसे जब हम छोटे थे तो अम्मी कहा करती थी कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में मछली कम खानी चाहिए। और वैसे भी गर्मियों में गोश्त या मछली से ज्यादा सब्जियां या हल्के फुल्के खाने खाने को दिल चाहता है। लेकिन जनाब, जापान में मछली हर मौसम में यकसा मकबूल है और मौसम के मुनासबत से इन्हें खाने का एहतमाम किया जाता है। जैसे अनागो खाबाया की दोन, जिसे मौसम गर्मा के एक खास वक्त में खाया जाता है और मौसम गर्मा की खोई हुई ताकत को बहाल किया जाता है। इसी तरह से साम्मा या पैसिफिक सौरी मछली को मौसम खिजा में खाया जाता है। इसकी वजह यह समझ में आती है कि इन खास दिनों में ये मछलियाँ अपनी गजाइत और जायके के उरूज पर होती हैं। तो आप भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से खबैया की दोन जरूर बनाएं और मौसम गर्मा की थकान को भगाएं, और हमें भी बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: रोहिणी जी, क्या हाल है? जापान भर में जारी गर्मी की इस प्रचंड लहर में अपना सही से ख्याल तो रख रही है ना?
1: जी बिल्कुल रख रही हूँ। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी तापघात की चेतावनी जारी कर लोगों से तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने को कहा है।
0: जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दौरान होने वाले तरह तरह के उत्सवों और मत्सरियों का भी आनंद ले। जैसे बीते दिनों मुझे टोक्यो के एक लोकप्रिय इलाके ओदाइबा में आयोजित हानाबी यानी आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला।
1: अरे वाह, ओदाइबा की हानाबी। करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार जापान आई थी तब मैं वहाँ रहती थी।
0: अच्छा।
1: तब देखी थी। जी बहुत मजा आया था। समुद्र किनारे बैठकर ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हुए आसमान में टिमटिमाती रंग बिरंगी आतिशबाजी सचमुच कमाल की थी।
0: अच्छा, आपने भी देखी। वैसे जानती है जापान भर में गर्मियों के दिनों में हानाबी के सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा, यानी इन दिनों हर सप्ताह कहीं न कहीं एक हानाबी का कार्यक्रम।
0: जी,
1: लोगों के मनोरंजन का जबरदस्त इंतजाम है ये तो। सुना है कि हर आयोजन में 10 से 30 हजार आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वैसे ये बताएं कि हानाबी का आयोजन गर्मियों के दिनों में ही क्यों होता है?
0: असल में इसके कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौसमी कारण हैं। इनका इतिहास जापान के एदो काल में जाता है। 1733 में अकाल और बीमारियों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति और सम्मान तथा भविष्य में आपदाओं से संरक्षण की प्रार्थना के रूप में इनका आयोजन किया जाने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध रही सुमेदा नदी पर होने वाली आतिशबाजी। उसके बाद ये परंपरा देश भर में फैल गई। गर्मियों की रातें सुहावनी हुआ करती थीं और लोग घरों के बाहर निकल सकते थे। साथ ही पुराने जमाने में धान की रुपाई के बाद और कटाई से पहले किसानों के पास थोड़ा समय होता था जिसमें वे इनका आनंद ले सकते थे।
1: अच्छा, यानी वक्त के साथ हानाबी गर्मी के दिनों की मात्सुरियों का अहम हिस्सा बन गई।
0: जी।
1: अच्छा, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र या नदी किनारे इनका आनंद लेने जाते हैं। मैंने देखा है कि इन मात्सुरियों में मेले भी लगते हैं जिनमें पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है।
0: जी हाँ, और अक्सर लोग गर्मियों की पारंपरिक जापानी पोशाक युकाता में दिखाई देते हैं।
1: अच्छा
0: अच्छा, रोहिणी जी, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि हानाबी का आयोजन मुख्य रूप से नदी किनारे या समुद्र तट पर किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे लकड़ी के मकान सुरक्षित रहते हैं
1: और दूसरे इन इलाकों में हवा भी होती है जिससे धुआं फटाफट गायब हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि हानाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
1: हाना तो पता है, हाना यानी फूल, जो जापानी लोगों को बेहद प्रिय होते हैं। यहाँ हर मौसम का एक खास पुष्प मिल जाएगा। बी का क्या अर्थ है?
0: बी का अर्थ है आग, यानी हानाबी का मतलब हुआ आग के फूल।
1: अरे वाह, आग के फूल। तभी मैं देखूं कि ज्यादातर हानाबी जब आकाश में फूटती हैं, सुंदर से फूल के जैसे दिखाई देती हैं, जैसे गुलदाउदी का फूल हो।
0: जी, गुलदाउदी और पियोनी के फूलों जैसी आतिशबाजी सबसे लोकप्रिय हैं। फिर कुछ आसमान में शिदारे यानागी यानी वीपिंग विलो या तितली या झरनी जैसी भी दिखाई देती हैं। स्या आकाश जब इनसे रोशन होता है तो कितना रोमांचक दृश्य दिखता है।
1: सचमुच गर्मियों में इन उत्सवों की धूम सारी थकान और बेचैनी खत्म कर देती है और मन उल्लास से भर जाता है।
0: वाकई, और मेरा मन हर सप्ताह मिलने वाले ढेर सारे पत्रों से खुश हो जाता है। तो उठाते हैं ये पत्र जिनमें श्रोता मित्रों की राय किसी पटाखे से कम नहीं है।
1: तो चलिए मैं लेती हूँ यह पत्र। पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक ने उनके गांव में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के बारे में जिक्र किया है।
0: अरे वाह, हम भी अभी जापान के उत्सवों की बात ही कर रहे थे और देखे ये उत्सव पर पत्र आ गया। जानती है, 2 साल पहले चेरी की देव से कार्यक्रम के लिए मैंने टोक्यो में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की रिपोर्टिंग भी की थी।
1: अरे वाह,
0: चलिए आगे बताएं कि प्रदीप जी क्या लिखते हैं।
1: जी लिखते हैं, शुभ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रथ यात्रा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आपसी सद्भाव और मिलन का एक अनोखा अवसर है। रथ यात्रा के अवसर पर हमारे गांव में भव्य मेला लगा है। मेले का उत्सवमय वातावरण मन को आनंद से भर देता है। गर्मा गर्म जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ, कुरकुरे पापड़, भुनी हुई मूंगफली, स्वादिष्ट घुगनी, मुगलई तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सभी के बीच प्रेम, अपनापन और भाईचारे का सुंदर वातावरण बन जाता है। यही मिलन हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। मेरा विश्वास है कि रथ यात्रा का यह पावन उत्सव हम सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, मानवता और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलाएगा।
0: सभी मित्रों को भी रथ यात्रा की बधाई। और प्रदीप जी, आपने अपने यहाँ की जगन्नाथ यात्रा की ऐसी विस्तृत जानकारी दी कि लगता है मानो हम भी आपके साथ मेले में पहुंच गए हों। और देखिए, प्रदीप जी ने अपना एक और पत्र भेजा है जिसमें वे जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के फुकुओका के पारंपरिक हाकाता गियोन यामाकासा उत्सव के बारे में एनएचके वर्ल्ड जापान के फेसबुक पोस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है।
1: जी,
0: लिखते हैं कि इस उत्सव के बारे में जानकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 780 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की एकता, साहस, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग का अद्वितीय प्रतीक है। सजी हुई भारी भरकम झांकियों को कंधों पर उठाकर लोग जिस उत्साह और अद्भुत सामंजस्य के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसे देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि किसी परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों का प्रेम कितना गहरा हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भावना और उत्साह के साथ इस उत्सव को आगे बढ़ाना जापानी संस्कृति की मजबूत नींव का परिचायक है। विशेष रूप से ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को जापान की महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी स्थान मिला है। ये केवल जापान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे उत्सव हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करें तो वे विश्व मंच पर भी सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं।
1: प्रदीप बसाक जी, सच कहा, ये परंपराएं हमें अपने अतीत, अपनी माटी से जोड़े रखती हैं। शांग्रीला जी, इस गियोन यामाकासा उत्सव को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वेबसाइट पर इसकी झलक देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना शानदार उत्सव है।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: इतनी भारी भरकम पालकियों को लोग जैसी मुस्तैदी के साथ लेकर दौड़ते हैं और जिस तरह से वे उसे जरा भी गिराए बिना मुड़ते हैं, वो वाकई हैरत अंगेज है।
0: सचमुच इस तरह का सामंजस्य यहाँ की लगभग हर मात्सुरी में देखने को मिल जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं को बता देते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। तो मित्रों, नोट करें फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।
1: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। अब यह पत्र आया है ओडिशा में केसिंगा से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश अग्रवाल। अरे वाह, सुरेश जी ने भी हकाता गियोन उत्सव का जिक्र किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लिखते हैं, वार्षिक गियोन यामाकासा उत्सव का रोमांच, उल्लास और सांस्कृतिक वैभव समेटे आपका वीडियो देखकर मन आनंद और विस्मय से भर उठा। विशाल और भारी भरकम पालकियों को कंधों पर उठाए कहारों की टोलियां जिस अद्भुत समन्वय, अदम्य उत्साह और तीव्र गति से नगर की सड़कों पर दौड़ रही थीं, वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति कराने वाला था। जन कल्याण एवं रोग निवारण की प्रार्थना की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से आश्चर्यजनक साम्य का आभास कराती हैं। इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और मन को संपन्दित कर देने वाली प्रस्तुति के लिए आभार।
0: सुरेश जी, आभार आपका भी, जो रथ यात्रा के व्यस्त समय के बीच आपने वक्त निकालकर पत्र लिखा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप कार्यक्रम सुनने के साथ ही वीडियो में प्रेषित जानकारी का भी आनंद लेने लगे हैं।
1: जी,
0: कुछ बातों को देखिए शब्दों में बांधना असंभव सा हो जाता है, उन्हें देखने में ही मजा है। और ये 19 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में सुरेश जी ने लिखा है, जापानी फोल्डिंग पंखे सेंसू तथा उसके इतिहास पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक लगी। इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। भारत में भी हाथ से झलने वाले पंखों की समृद्ध परंपरा रही है। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में इनके विविध और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि बैटरी से चलने वाले छोटे पंखों के प्रचलन के बाद हाथ पंखों का उपयोग काफी कम हो गया है, फिर भी ये हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर प्रतीक है। सही कहा उन्होंने इस बात को। और इसी संदर्भ में मैं ओडिशा के बांस की पत्तियों से निर्मित एक आकर्षक डिजाइनर हाथ पंखे का चित्र साझा कर रहा हूँ। आशा है यह आप सभी को पसंद आएगा। देखिए रोहिणी जी, उनका भेजा ये चित्र कितना रंग बिरंगा पंखा है।
1: अरे वाह, ऐसे पंखे तो मैंने भी अपने यहाँ देखे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, और ये हरे और गुलाबी पंखे की डिजाइन कितनी सुंदर है।
0: जी वाकई।
1: और इसका आकार तो एक झंडे जैसा दिख रहा है।
0: जी हाँ जी हाँ, और वाकई इसे देखकर दादी नानी की याद आ गई। उनके सिरहाने ये अक्सर रहता था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और इसको घुमाते हुए हाथों की बढ़िया कसरत हो जाती है।
1: बिल्कुल, सो तो है।
0: अच्छा, 19 जुलाई के कार्यक्रम के लिए बनाई गई प्रोमो रील को अनेक लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया है। फेसबुक पर कुछ कमेंट थे। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम चेरी के देश से बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका पांडे ने इसे वाव बताया है। वहीं लता पांडे, अनिल डोबरियाल, अरविंद कुमार मिश्रा, रेणु मिश्रा, सोनी मोनी और श्रुति ने इमोजी के जरिए इसे मजेदार बताया है।
1: आप सभी का आभार। शांग्रीला जी, आजकल ये प्रोमो रील लोगों में काफी खास लोकप्रिय हो रही है। ताना बाता उत्सव के बारे में रील तो ऐसी वायरल हुई कि पिछले 2 सप्ताह में 35,000 से ज्यादा लोगों ने देख ली है।
0: वाकई।
1: हाँ, वहीं जापान में ऑटो रिक्शा की रील भी खूब पसंद की गई और बहुत मजेदार कमेंट भी आए हैं। मोनिता मिधा लिखती हैं, लव दिस लाइन, ऑटो मिल गया जापान में। वहीं उमेश कुमार शर्मा कमेंट करते हैं, जापान में भी ऑटो होता है, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, यह जानकर आश्चर्य भी हुआ।
0: उमेश जी, जैसा कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऑटो चालक NHK में हमारी सहयोगी होरी कोशी जी हैं, उन्होंने शौकिया ऑटो खरीदा है। भारत प्रवास के दौरान उन्हें इसकी सवारी इतनी मजेदार लगती थी कि मौका मिलने पर उन्होंने इसे खरीद ही लिया, लेकिन इसका आयात करने में उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी।
1: अब शौक के आगे खर्च को क्या देखना, शौक बड़ी चीज है। इस अगले कमेंट को पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। आयुष खान लिखते हैं, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के।
0: आयुष जी, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के। जरा सोचिए, आप श्रोताओं के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस रील पर ओम अग्रवाल का कमेंट है, जहां जापान में रोज नई नई कारें आती हैं, वहां इस कलयुग 2026 में ऑटो, भाई वाह।
1: ओम अग्रवाल जी, आजकल जापान में ऑटो रिक्शा खूब लोकप्रिय हो रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग नए नए तरीकों से इनका उपयोग कर रहे हैं। कोई इसमें चाय की टपरी बना रहा है, तो कोई इसमें सोने का इंतजाम कर लंबी सैर की सवारी बना रहा है। ओम अग्रवाल जी का एक और कमेंट है, मेरे घर के पास भी 5 साल से ऑटो खड़ा है लेकिन तोक्यो में जानकर आश्चर्य हुआ। हेमराज इसको एकदम दया वाला बताते हैं। लाल बाबू पांडे ने लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। राघवेंद्र नौटियाल ने इसे गजब बताया। मुरारी शाह ने बहुत बढ़िया लिखा और मृणालिका ओझा, अशोक मोजीदारा, राजेश गिरी ने इमोजी के जरिए नमस्कार लिखा है।
1: योकोहामा में जापानी महिला द्वारा संचालित दिलजोड़ कैफे की रील पर गोविंद सोनी का कमेंट है, शानदार प्रयास। भाषा और संस्कृतियों की समझ मजबूत होने से रिश्ते निश्चित ही प्रगाढ़ होंगे। जापान एक अद्भुत राष्ट्र है और जितनी भी मेरी समझ है उसके अनुसार ये एक शानदार देश है। मृणालिका ओझा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, सुंदर। वहीं अशोक डीवाई ने लिखा है कि दोनों शांतिप्रिय सभ्यता मिलकर एशिया टाइगर बन जाएंगी।
0: इतने मजेदार कमेंट के लिए सभी मित्रों का आभार।

0: आपके कमेंट्स से जान पड़ता है कि रील बनाने के हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और रोहिणी जी, कार्यक्रम के शुरू में हमने हनाबी यानी आतिशबाजी की इतनी चर्चा की, तो क्यों ना चलते चलते ये गीत सुना जाए।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: गीत है हनाबी, जिसे स्वर दिया है आई ने।

0: दोस्तों आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

0: और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कैच ऑफ द डे का, जिसमें हम आपको खाना पकाने से मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। आज हम बात करेंगे दोयो दौरानिये के दोयो नो उशी नो ही, जिसे बैल का दिन भी कहा जाता है। वैसे गुल साहब, जब आप ये नाम बैल का दिन सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है?
1: सोफिया साहब, मेरा ख्याल है कि ये मौसम गर्मा और उनागी यानी बाम मछली से मुतल्लिक है, क्योंकि हर साल इस दिन में उनागी रेस्तरानों और डिपार्टमेंट स्टोर्स के बाहर में बड़ी तवील कतारें देखा करता हूं।
0: बजा फरमाया गुल साहब आपने, लेकिन दर हकीकत दोयो दौरानिया बैल का दिन महज मौसम गर्मा में नहीं होता।
1: अच्छा।
0: 1872 तक जापान में वक्त का अंदाजा लगाने के लिए शमसी कमरी कैलेंडर राइज था। उस कैलेंडर में हर मौसम यानी बहार, गर्मा, खिजा और सरमा के आखिरी 18 दिनों को दोयो कहा जाता था और उसे आने वाले मौसम की तैयारी का दौरानिया ख्याल किया जाता था।
1: सामिन, मौसम गर्मा का दोयो साल का गर्म तरीन वक्त होता है। तकरीबन 250 साल कबल एदो दौर में गर्मी की शिद्दत से होने वाली थकान को दूर करने और दोयो दौरानिया के डे ऑफ द ऑक्स यानी बैल के दिन पर होने वाली बीमारी से बहाली के लिए कुछ सेहत बख्श इकदाम करना काफी मारूफ हो गया था। जापानी हरूफ तहजी के हर्फ ऊ से शुरू होने वाले किसी चीज़ को खाना भी अच्छा समझा जाता था, क्योंकि दी ऑक्स या उशी भी ऊ से शुरू होता है। और हुआ कुछ यूं कि फिर उस दौर में उनागी का बया के प्याला खाना बहुत मकबूल हो गया। गाड़ी का बया के सॉस का नमकीन और मीठा जायका उनागी के साथ ज़बरदस्त लगता है। ये गजाइत से भरपूर होने के साथ साथ उनागी की मट्टी जैसी महक को भी दूर करता है। आजकल जब लोग उनागी के बारे में बात करते हैं तो कबाया की फौरन जहन में आता है।
0: उनागी में हयातीन यानी विटामिन की बड़ी मकदार मौजूद होती है और जापानी अफराद आला दर्जे की गजाइत के हामिल एक डिश के तौर पर गुज़िश्ता 1000 साल से इसे खा रहे हैं।
1: जी, आज के दौर में भी बहुत से गजाइत भरे खाने दस्तियाब हैं, लेकिन जापानी अफराद अभी भी मौसम गर्मा में उनागी कबाया की खाने के मुंतजर रहते हैं। उनागी कबाया की जापानी अफराद के लिए एक रिवायत बन गया है।
0: सामिन, अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे जापानी खाने पकाएं। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे।

0: गुल, वैसे वतनाबे साहिबा ने बड़ा अच्छा मुतबादल इस्तेमाल किया है बाम मछली का, क्योंकि सार्डिन भी गजाइय से भरपूर होती है।
1: जी सूफी, और आपको तो पता ही है कि बाम कितनी महंगी होती है और सार्डिन तो इंतहाई मुनासिब कीमत में मिल जाती है और जापान में रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है, इसलिए तो सारा साल दस्तियाब होती है।
0: जी गुल, और दूसरे कई ममालिक में भी इंतहाई आसानी से दस्तियाब होती है।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर ना मिले तो फिर आज की डिश बनाने के लिए कौन सी मछली इस्तेमाल की जाए?
0: कोई बात नहीं, वही मछली यानी के बाम इस आसानी से अगर आपके मुल्क में दस्तियाब है तो इसे इस्तेमाल करें, जिसके नेमल बदल के तौर पर सार्डिन को इसके की डिश तैयार की गई है।
1: अच्छा, फिर तो बड़ी ये बेहतरीन सी डिश बन जाएगी ना?
0: बिल्कुल वही डिश बन जाएगी। और गुल, अगर दोनों में से कोई भी ना हो तो कोई भी दूसरी मछली, मिसाल के तौर पर हॉर्स मैकरल वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है।
1: अच्छा चले, मछली का मसला तो हुआ हल जी। और चावल भी आप हमेशा बताती हैं कि जो चावल भी आप सामिन के इलाके में आसानी से दस्तियाब हों उसे थोड़ा सा नरम करके पका लें,
0: बिल्कुल
1: खिचड़ी के अंदाज में। तो ये ठीक ठीक सबक बताया ना मैंने आपको,
0: खिचड़ी के अंदाज में नहीं, थोड़ा सा नरम,
1: थोड़ा नरम कर लिया। खिचड़ी ज्यादा नरम होती है क्या?
0: खिचड़ी ज्यादा नरम हो जाएगी। अच्छा, नहीं
1: चलिए।
0: इसके अलावा गुल, पोटैटो स्टार्च ना मिले तो कॉर्न स्टार्च से भी काम चल जाएगा। मैं भी अक्सर पोटैटो की जगह कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल कर ही लेती हूँ।
1: अच्छा चलिए, ये तो हो गए जनाब नेमुल बदल अज्जा।
0: बिल्कुल,
1: और बाकी अज्जा तो हर जगह बहुत आसानी से दस्तयाब होते हैं, तो हमारे सामने ये डिश मेरा ख्याल है कि बना ही लेंगे अब तो।
0: बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। एक चीज भूल गए आप।
1: अच्छा कौन सी?
0: सांशो या पेपर लीव्स।
1: ओहो, ये तो भूल ही गया। अच्छा अगर इसे ना भी सजाया जाए तो काम तो चल जाएगा ना?
0: वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू से किसी डिश में चार चांद लग जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे पुदीना, धनिया वगैरह हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मछली के साथ सोया एक हर्ब होता है जो हमारे यहाँ और कई मुल्कों में पाया जाता है, और मछली के साथ इसका बड़ा अच्छा इम्तिजाज होता है।
1: अच्छा, यानी आप कहना चाह रही हैं कि अगर आज की तरकीब में सोए को सांशो की जगह डाला जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और गुल, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सामने गर्मियों में ये डिश जरूर बनाएंगे।
1: जी अगर बनाए तो हमें जरूर बताइएगा।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
3: जी सामाई, प्रोग्राम आपने सुना और सुनकर यकीनन आपका बेखाबाया के दोन खाने का दिल चाहने लगा होगा और मुंह में पानी भी आ रहा होगा। वैसे जब हम छोटे थे तो अम्मी कहा करती थी कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में मछली कम खानी चाहिए। और वैसे भी गर्मियों में गोश्त या मछली से ज्यादा सब्जियां या हल्के फुल्के खाने खाने को दिल चाहता है। लेकिन जनाब, जापान में मछली हर मौसम में यकसा मकबूल है और मौसम के मुनासबत से इन्हें खाने का एहतमाम किया जाता है। जैसे अनागो खाबाया के दोन, जिसे मौसम गर्मा के एक खास वक्त में खाया जाता है और मौसम गर्मा की खोई हुई ताकत को बहाल किया जाता है। इसी तरह से साम्मा या पैसिफिक सौरी मछली को मौसम खिजा में खाया जाता है। इसकी वजह ये समझ में आती है कि इन खास दिनों में ये मछलियाँ अपनी गजाइत और जायके के उरूज पर होती हैं। तो आप भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से खबैया के दोन जरूर बनाए और मौसम गर्मा की थकान को भगाएं, और हमें भी बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।